तूने गणेश पेठ पार्थी पुणे से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या, श्लोक और भैया। कोटवा नारायणपुर यूपी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी। कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत। बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा। राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत। सुनना चाहते हैं तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और राम बाबू मालवीय, ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषि, चिऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी, मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि, पलक, अमीशा, अनुष्का, आशीष, लक्षिता, जतिन, मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा, एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल। नजीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लिंबू, रितेश लिंबू, उषा, ज्योति, किरण, दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार। भुट्टो मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा से अमर वर्मा। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो। आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर MP से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फर्क।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाज़ियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी ज़िला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम जावेद, उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड़ शहर से पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत। मन चाहे

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: हेलो मिसा शादी
1: है। अभी तो 10:30 हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
1: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, आशा जी आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है?
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबीलाल जी आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
4: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें कौन रोके भाई? हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुँचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
3: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं?
1: मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूँ आप ही की तरह, ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
0: नक्काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
3: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहाँ से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
5: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
5: बड़े साहब जी हैं
3: है? ये कैसा सवाल है?
1: मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
5: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
1: अरे
5: कब आएंगे?
1: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
5: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
2: जी।
5: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
2: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
5: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
0: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
5: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
0: अच्छा,
5: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
0: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
5: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
1: इसीलिए कहते

0: हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
1: सर, आप बुरा न माने तो एक बात को।
2: हाँ हाँ, बोलो बोलो।
1: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
2: अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
0: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
2: डॉक्टर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
0: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
3: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
0: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका?
1: जी सत्यमूर्ति।
2: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना
1: जी?
2: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
1: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना, मैं आपका एहसान मानूंगा।
2: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
1: जी?
2: अरे आपको क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता।
1: ठीक ठीक ठीक, आप ये क्या कह रहे थे? मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ। इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
2: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई।
0: चौकन्ना, टेलीफोन उठाना। ओ, कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
3: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
0: हिसाबी लाल जी।
2: सर, आप सीनियर हैं।
0: ओहो, ठीक है ठीक है, मैं ही उठाता।
2: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
0: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए।
2: लगता है साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
1: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
0: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
4: पैसा मत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
2: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
5: नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
0: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे पास।
6: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है? स्टुपिड, मेरा मुंह क्या ताकते हो? जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
7: जी सर।
1: सर, अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
0: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा
1: जी।
0: हाँ कल आना कल।
8: सजन कब आएगा, सजन कब आएगा।
0: चौकन्ना।
5: जी सर।
0: सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
5: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
0: क्या,
5: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
0: हिसाबी लाल जी,
2: ये
0: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
2: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
8: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
2: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
0: कर लो। है?
2: आशा जी, आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
3: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ?
2: ये भी ठीक है।
1: नमस्कार सर।
0: कहिए क्या काम है?
1: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ।

0: आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
1: हाँ ठीक है ठीक है।
2: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं?
0: जी हाँ।
3: नक्काल बाबू,
1: हाँ
3: आपको साहब बुला रहे हैं।
1: हाँ ठीक है, आता हूँ। आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
0: नमस्कार सर।
3: नमस्कार नक्काल बाबू।
0: जी
3: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
0: कहिए सर।
3: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है।
0: जी
3: 12 को पुत्तूर में साले की बेटी की शादी है।
0: ओ।
3: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
0: ओ तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
3: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
0: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा।
3: वही तो मेरी समस्या है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं।
0: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
3: नक्काल बाबू
0: जी,
3: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं।
0: जी
3: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
0: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
3: हाँ ठीक है, सारे डेट्स ठीक तरह से नोट कर।
0: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
4: उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
2: अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू।
0: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11 12 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
2: अरे वाह।
0: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
1: भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
0: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
1: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
2: सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
0: तो फिर मैं कब आऊं?
1: कल आना, कल
0: कल कल तो इतवार है।
1: ओहो तो सोमवार को आइए, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
3: नक्काल बाबू।
0: जी सर।
3: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
0: जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
3: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
0: पर सर लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था, मैंने सोचा सर ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
3: खैर उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। The whole program should be closely monitored.
0: जी हाँ, whole program close ही होना चाहिए।
3: ये कैसी बातें करते हैं नक्काल बाबू?
0: जी
3: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
0: जी,
3: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं, पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
0: जी।
3: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
1: साहब जी ये असल में सर्कुलर नहीं सर किलर है।
3: खैर अब जो भी समझो। हाँ पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए, उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
0: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा, 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 कॉफी मंगा लूंगा।
3: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
0: सर आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगी।
3: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना।
0: जी हाँ साहब हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
3: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
0: ओके साहब। सर मैं चाहता हूँ कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
3: अरे नक्काल बाबू इसको झंझट कहते हो तुम?
0: जी
3: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
0: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूँ।

0: आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा
1: और क्या।
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट।
3: क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से।
3: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। आप खाकर तो देखिए, ये आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
3: ये लीजिए।
2: चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चला लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट। चला लीजिए चना।
0: अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण सरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके। ओ चने वाले दादाजी
2: जी,
0: आइए जरा।
3: और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना?
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना?
3: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
3: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
1: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया।
3: नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ।
2: पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चला भाई चला, सर्वा गरम चला।
0: अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध द्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
1: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
0: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
1: मैं आशावादी हूँ।
0: हाँ, तुम हो ही आशा।
1: कम से कम तुम जैसी सिनिक कवि तो नहीं हूँ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूँ। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध

0: में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर साहब जी एक समस्या है।
1: हाँ हाँ कहिए।
0: काफी ठंडी हो रही है।
1: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी आ
0: हिसाबी लाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
2: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
3: बच्चे भी कुछ
2: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
1: नक्काल बाबू,
0: क्या
1: कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
0: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
1: आज फुर्सत नहीं है, कल आना कल।
4: हाँ तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
0: साहब जी ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
1: अरे नकाल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
0: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
2: सर एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान है, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
1: वेरी गुड। साथियों ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
0: उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
1: हाँ एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
2: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
0: ये ठीक नहीं होगा सर, नो एक नई पेटी बनवा दी जाए।
3: बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
1: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
0: जी,
1: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
3: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
1: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
0: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
1: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
2: साहब जी हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते हैं स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
0: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है,
3: मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा।
2: बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
1: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा?

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है, ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली है। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित होंगे।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुला कर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबीलाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं, यही नहीं, वे इस महान लड़ाई

0: जेल भी गए और
1: गर्मा-गर्म चना, बस एक रुपए में एक पैकेट चना खाइए था, चना खाइए चना।
2: अजी महाशय,
1: बड़ा मजेदार चना है।
3: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ, अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
1: भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना, मसालेदार चना, चना खाइए साहब चना।
3: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा। आपको वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
4: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
3: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
4: ओ समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
3: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
4: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र?
3: सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
5: सर, मेरी अर्जी
3: आज नहीं होगा, कल आना, कल।
5: आप जी मेरा प्रमाण पत्र।
3: अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल। अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
4: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
3: क्या,
4: कल आना कल।
3: अरे सत्यमूर्ति जी मेरी नौकरी चली जाएगी।
4: हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।

कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।